0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 एफएम, अलवेज हैड टची।
1: कृषि संदेश।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart touching.
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने किसी ऐसे मुसाफिर को देखा है जो अपनी मंजिल का रास्ता जानते हुए भी रास्ते में मिलने वाले किसी सुंदर मेले को देखकर वही रुक जाता है? वह उस मेले के जादू में ऐसा खो जाता है कि यह भूल ही जाता है कि शाम होने वाली है और उसे आगे भी जाना है। वह भूल जाता है कि वह कहां से आया था और उसे कहां पहुंचना था। हम सब की हालत भी आज कुछ ऐसे ही है। हम इस जीवन के मेले में आकर इतने मदहोश हो गए कि हमारा यहां आना और न आना दोनों बराबर हो गया है। कबीर साहब आज हमें इसी गहरे आत्मविस्मरण यानी खुद को भूल जाने की बीमारी से जगा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह गहरा दार्शनिक सूत्र। आया अन आया भया जे बहुराता संसार, पंथ भुलावा गफिलिया कहे गए कुबुद्धि हार। आया आया अन आया भया जे बहुराता संसार, आया अन आया भया

0: का आना न आने के बराबर हो गया है। क्यों? जे बहुराता संसार, क्योंकि यह पूरा संसार बावला हो गया है, माया के वशीभूत होकर पागल हो गया है। जब मनुष्य यहाँ आकर अपनी चेतना को हो नहीं जगाता तो उसका यह कीमती जन्म लेना पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है। अगली पंक्ति में इस भटकाव के कारण बताते हैं, पंत भुलावा गफिलियाँ, वह अपने असली रास्ते को भूल गया है, क्योंकि वह गफलत यानी गहरी लापरवाही और अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। और इसका परिणाम क्या होता है? गए कुबुद्धि हार, वह अपनी कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि के कारण जीवन की इस बाजी को पूरी तरह हार कर यहाँ से विदा हो जाता है। अगर इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह दोहा मानवीय चेतना के पतन की कहानी कहता है। परमात्मा ने मनुष्य को विवेक की शक्ति दी थी ताकि वह संसार के आकर्षणों के पार देख सके, लेकिन जब चेतना पर अज्ञान का पर्दा पड़ता है तो विवेक कुबुद्धि में बदल जाता है। मनुष्य जिसे लाभ समझता है वह असल में उसकी सबसे बड़ी हानि होती है। अपनी असली आत्म स्वरूप को भूलकर वासनाओं के पीछे भागना ही वह गफलत है जो एक चैतन्य जीव को केवल एक भौतिक शरीर तक सीमित कर देती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद का निरीक्षण कीजिए कि कहीं हम भी उस बहुराते यानी बावले संसार का हिस्सा तो नहीं हैं? क्या हम भी गफलत की उस नींद में सो रहे हैं जहां हमें समय के बीतने का एहसास ही नहीं है? आज कोशिश कीजिए इस आत्मविस्मृति से बाहर निकलने की। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, कुबुद्धि को छोड़कर सुबुद्धि की ओर बढ़िए, जो आपको सही और गलत का अंतर सिखाती हैं। जब तक आँखों में सांसों की रोशनी है तब तक अपने असली रास्ते को ढूंढ लीजिए ताकि आपका संसार में आना सार्थक हो सके और आप जीवन की बाजी हारने से बच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: माझा एक हट्टी शेजारी आहे, संपूर्ण कॉलनीने सोलर पॅनल बसवले पण तो काही केल्या मान्यच करत नव्हता की बिल खरंच शून्य येऊ शकत। मी म्हटलं, अरे बाबा, नावच आहे PM सूर्य घर मोफत वीज योजना। मग जेव्हा हळूहळू सगळ्यांचं वीज बिल शून्य यायला लागलं तेव्हा म्हणाला, आता बसवूनच घेतो। PM सूर्य घर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा PM सूर्य घर .gov.in।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अभय चौहान, फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ मेरे दोस्त के साथ मिस्टर राजन बाजी प्रोग्राम करियर गाइडेंस में। आपको फिर से हम लेके आए हैं नए टॉपिक्स, और पिछली बार जैसे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड द करियर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 18 से लेके 21 तक की उम्र होती है वो हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 18 मतलब तकरीबन आप 12वीं पास हो गए रहते हैं या होने वाले होते हैं, 21 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं या होने वाले होते हैं। तो ये जो टाइम होता है, जैसे पिछले एपिसोड में हमने जो बात की, इस उम्र में ये सब डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैंने करियर में क्या करना है।
1: पूरा ये 3 साल में आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सारी चीजों पे डिपेंड आपका पूरा एंटायर लाइफ बन जाता है।
0: जी जी सही कह रहे
1: हैं। ये 3 साल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए, और यहीं से आपका करियर बनता है। ये 3 साल में ही आपका करियर बनता है। तो मैं गुजारिश करूंगा ये सारे अपने लिसनर्स को कि ये 3 से 4 साल जो है आपके बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर और बहुत ही कॉन्शियसली ये बिताए, जो कि आपके करियर के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: सही कह रहे हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम टच करने वाले हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर टू हायर यू, मतलब कोई एक्स वाई जेड कंपनी है तो वो आपको हायर क्यों करे, किस लिए करे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, कैंडिडेटचर ने क्या होना चाहिए कि वो आपको हायर करे। अब आप कहेंगे कि इंजीनियर होना तो बी होना चाहिए, ठीक है, हम उस एस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, पर एक्चुअली एम्प्लॉयर को चाहिए क्या रहता है, तो उसमें हम लोग अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। आप श्रोताओं जो लिसनर हैं उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं। मेरे कॉर्पोरेट करियर में तकरीबन 8,000 से 9,000 इंटरव्यूज में ले चुका हूं और लोगों को हायर कर चुका हूं। सेम मेरे जो सहयोगी हैं उसी तरह से
1: मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा है सर
0: जी।
1: अभी जैसे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी काम कर चुका हूँ
0: जी,
1: तो हर बार मेरी सोच फिक्स रहती थी कि मुझे कैसा कैंडिडेट चाहिए
0: जी,
1: मुझे कैसा आदमी चाहिए मेरे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए
0: जी, जी, जी।
1: तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट आपने डिस्कशन के लिए ओपन किया है
0: जी, जी।
1: कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर
0: जी जी,
1: है ना। तो ये अपने दोनों का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। तो सर आपसे चालू करते, आप बताइए कि आप क्या देखते थे कैंडिडेट में।
0: हाँ जी, मैं शेयर करता हूँ कि मैं क्या देखता था और आज भी जो भी हायर करते हैं लोग वो क्या देखते हैं। इसमें 3 फैक्टर है, हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लेंगे। अगर आपके पास जो लिसनर है कागज पेन है तो आप लिख लीजिए, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो 3 फैक्टर जो एम्प्लॉयर जो देखते हैं उसमें एक एक चीज है। सबसे पहला फैक्टर आता है कॉम्पिटेंसी,
1: 100%
0: है ना। अब कॉम्पिटेंसी एक इंग्लिश शब्द है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक एलाबरेट कर लेता हूँ कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है। कैन ही डू द जॉब, मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मुझे गड्ढा खुदवाने का काम है तो मैं उस बंदा या बंदी को हाथ में कुदाल दे दूंगा तो ये गड्ढा खोद पाएगा कि नहीं पाएगा। कैन ही डू द जॉब, कॉम्पिटेंसी,
1: वो ये काम कर पाएगा या नहीं। दूसरी चीज मैं ये देखता था कि मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है वो जॉब करने के लिए, वो काम करने के लिए उसका मोटिवेशन लेवल कितना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो काम जबरदस्ती से कर रहा है
0: जी
1: या मजबूरी में आके ये काम यहाँ पे कर रहा है,
0: ओहो,
1: है ना। तो ये मैं इंटरव्यू जब भी लेता था, है ना, तो वो कैंडिडेट में देखता था कि उसका मोटिवेशन लेवल पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या है। जैसे मैं सीधा सा सवाल पूछूं कि भाई तू सेल्स एंड मार्केटिंग में ही क्यों आना चाहता है, या फिर मैं पूछूं कि भाई तू ऑपरेशन में ही क्यों जॉब करना चाहता है ना। कुछ कैंडिडेट का एप्टीट्यूड होता है R&D का
0: जी,
1: तो मैं पूछता हूं उनको कि भाई तू R&D में ही क्यों करना चाहता है।
0: बराबर।
1: तो मेर पैसा यदि ये सवाल है तो उसका वो मोटिवेशन नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: है ना। उसका इनर इंटरेस्ट क्या है, उसका इनर मोटिवेशन, यदि उसका इंटरनल इंटरेस्ट है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सर इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ
0: जी,
1: मैं आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन टू दिस प्रोफाइल
0: यस
1: बिकॉज दैट इज माई लाइकिंग
0: यस,
1: ये मैं सुनना चाहता हूँ
0: जी,
1: जो भी इंटरव्यू के लिए आता है। तो ये मोटिवेशन लेवल उसका वो पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या है, ये दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंस मैं उसको देता हूँ और वो चेक करता हूँ जो भी मेरे सामने इंटरव्यू के लिए बैठा है।
0: अब तीसरा पॉइंट मैं शेयर कर लेता हूँ बाजी सर, तीसरा पॉइंट होता है मैच। अब लिसनर जो सुन रहे होंगे, मैच मतलब वो शादी वाला कुंडली वाला मैच मत समझिएगा, क्या वो वाला मैच नहीं है ये। मैच मतलब अभी इसमें होता है कि मेरे पास जैसे कैंडिडेट आते थे, मेरे पास XYZ का प्रोफाइल है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक टीम है, उसमें मेरे पास समझो दो रिक्वायरमेंट, मेरे पास वैकेंसी है और मुझे दो लोग भरने हैं। तो सबसे पहले मैं ये ही देखता था कि जो मेरे पास ऑलरेडी टीम है उस टीम में वो ये जेल हो पाएगा कि नहीं।
1: करेक्ट।
0: फर्ज करो कि अगर सारी एक एज ग्रुप हो गया या कुछ थॉट प्रोसेस वाले लोग हो गए, तो इस कैंडिडेट को मैं अगर ले रहा हूं तो इस टीम में वो जेल हो पाएगा, मैच हो पाएगा कि नहीं, पहला ये। Correct. दूसरा, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। मैं इसके लिए एक बहुत लाइव एग्जांपल मेरा खुद का ही मैं दे देता हूं। मैं 10 से 12 साल पहले मैं एक एमएनसी बैंक में काम करता था, नाम नहीं लूंगा मैं। तो वहां पे जब रिक्रूटमेंट होती थी तो वहां पे रिक्रूटमेंट में सबसे पहले ये देखते थे कि किस लेवल पे वो बंदा कैंडिडेट है, क्योंकि वहां पे जिस किसी को भी रिक्रूट करते थे बहुत हाई फ्लाइंग टाइप के उनको कैंडिडेट चाहिए रहते थे, जो पर्सनालिटी हाई फ्लाइंग।
1: करेक्ट।
0: तो अगर वो उसमें मैच बैठता था, अगर हाई फ्लाइंग पर्सनालिटी है तो ही लेते थे, नहीं तो नहीं लेते थे चाहे वो कितना भी अच्छा हो।
1: करेक्ट। करेक्ट।
0: तो एज ए इंटरव्यूअर मैं हमेशा ये देखता था टीम में ये फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा तो ही इज इन।
1: आपने बताया कि ये मैट्रिमोनियल मैच नहीं है
0: जी,
1: बट
0: जी।
1: मैं बता दूं आपको सर, वहां पे भी सिमिलर एक चीज होती है
0: जी,
1: कि एम आई फिट फॉर यू
0: एंड
1: आर यू फिट फॉर मी।
0: राइट राइट।
1: तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वही है कि इज द कैंडिडेट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज फिट फॉर कैंडिडेट और नॉट,
0: यस
1: दैट इज द मैच।
0: यस यस। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अभी ये थ्री फैक्टर्स जो एम्प्लॉयर देखता है कैंडिडेट में, हमने उस पर डिस्कशन कर दिया, उसको रिपीट कर देते हैं, कॉम्पिटेंसी, मोटिवेशन और मैच।
1: मैच।
0: अभी दूसरा पॉइंट आता है जो मैं देखता था सबसे इम्पोर्टेंट, इज ही एम्प्लॉयबल।
1: करेक्ट।
0: मतलब जो कैंडिडेट है उसको जॉब दिया जा सकता है कि नहीं, वो उसको एम्प्लॉय हम कर सकते हैं कि नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है इजी एम्प्लॉयबल, बाजी सर हम उसको तीन चीज में उसको डिवाइड कर लेंगे, जिसे मैं कहता हूँ आस्क, ASK।
1: करेक्ट।
0: है ना, उसको कहते हैं आस्क। आस्क मतलब ये हो गया एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, ये तीन ही चीज होती है जो आपका करियर बनाती है।
1: कैंडिडेट एम्प्लॉयबल है या नहीं, है ना, मैं भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ इसके ऊपर। मेरे पास लास्ट मंथ में एक कैंडिडेट आया था, ही वॉज फ्रॉम केरला, ही हैड दी 5 years ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस।
0: ओके।
1: हिज रिक्वायरमेंट वॉज सिमिलर, सैलरी दिया तो भी चलेगा सर।
0: बट
1: अदर देन मलयाली एंड इंग्लिश उसको कोई और लैंग्वेज आती ही नहीं थी, और यहाँ पे है कि हमें इंटरेक्ट करना है ना, मेजरली पुणे में तो हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है महाराष्ट्रियन, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स आर महाराष्ट्रियन, तो एटलीस्ट समझना तो चाहिए
0: जी।
1: तो इवन दो ही हैड द प्रॉपर एक्सपीरियंस, इवन दो ही हैड द प्रॉपर क्वालिफिकेशन, आई कुड नॉट सेलेक्ट हिम।
0: प्रोफाइल के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे उस, हाँ, उस, हाँ,
1: probably, हाँ, शायद, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो फिट नहीं था
0: जी,
1: है ना।
0: अभी सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो सबसे पॉइंट है अभी इसमें आता है, हम तीन जो पॉइंट मैंने अभी बताया, आस्क, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। तो मैं अभी एटीट्यूड पे लाइट थ्रो करूंगा और हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।
1: हाँ, हाँ।
0: और जो हमारे लिसनर हैं उनको मैं आपको बता दूं, एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट है दोस्तों, आप गार्ड बांध के रख लो, कॉर्पोरेट हायर्स यू ओनली फॉर एटीट्यूड एंड दे विल ट्रेन यू फॉर स्किल्स। मैं रिपीट करूंगा, कंपनी विल हायर यू फॉर एटीट्यूड एंड They will train you for skills. अब मैंने भी जितने को लोगों को हायर किया, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता, मुझे अगर एटीट्यूड दिख गया बंदे में या बंदी में तो मैं उसको हायर कर लेता था। अब आप सोचेंगे बहुत कॉमनली यूज वर्ड है एटीट्यूड, अरे मस्त एटीट्यूड है, चांगला एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, अरे एटीट्यूड दाखो। तो पर अगर हम किसी को पूछने जाएंगे एटीट्यूड है क्या, तो डिफाइन करना उनको मुश्किल हो जाता है कि है क्या। तो इस एंगल से मैं आपको एटीट्यूड में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या देखते थे हम कि जब कैंडिडेट को हायर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एटीट्यूड में आ जाता है विलिंगनेस टू लर्न, है कि नहीं, काम सीखने की इच्छा है कि नहीं, कमिटमेंट, डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड, एम्बिशियस है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है और ये एटीट्यूड के अंदर ही आता है।
1: बहुत सही बता रहे सर आप एटीट्यूड के बारे में, और मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग
0: जी,
1: है ना। मैं एक छोटा सा कोट जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ
0: जी,
1: है ना, एक बहुत अच्छा कोट है
0: जी,
1: ऑथर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द द लॉन्गर आई लिव द मोर आई रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन माई लाइफ.
0: राइट.
1: एटीट्यूड टू मी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पास्ट.
0: करेक्ट.
1: देन एजुकेशन.
0: जी.
1: देन मनी. देन सर्कमस्टेंसेस.
0: जी.
1: देन फेल्यूर. देन सक्सेस. देन व्हाट अदर पीपल थिंक से और डू. इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपीयरेंस गिफ्टेडनेस और स्किल. इट विल मेक और ब्रेक अ कंपनी अ होम.
0: सो दोस्तों, तो आपने सुन लिया कि एटीट्यूड का कितना इम्पोर्टेंट है. अब इसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा. मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू लिए और रिक्रूट किया लोगों को, अगर मुझे उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड उसका पसंद आ जाता है और बाकी चीजों में अगर थोड़ा कम भी है तो भी मैं उसको हायर कर लेता था. अगर एटीट्यूड रहेगा तो वो जो कैंडिडेट है वो सीखेगा, परफॉर्म करेगा, सीखने की इच्छा रखेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा और वो किसी भी कंपनी के एसेट साबित होता है. तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं उसके वर्ग में. नेक्स्ट है तो है
1: स्किल.
0: स्किल
1: स्किल मतलब क्या, कि उसका एनालिटिकल एबिलिटी, सॉफ्ट स्किल, क्वांटिटेटिव स्किल, कंप्यूटिंग स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल. दिस इज हाउ वी कैन डिस्क्राइब द स्किल.
0: जी जी जी.
1: तो स्किल एक चीज हम लोग देखते हैं, तो इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं सर?
0: बेसिक स्किल्स है, मैं बहुत उसको लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली द स्किल्स आर. व्हाट डू मीन बाय स्किल? अब हम एकदम ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, अनपढ़ लोग जैसे होते हैं हम उस लेवल पे हम जाते हैं.
1: राइट.
0: अभी हर एक को पता है, जो लिसनर है, बच्चा है, बूढ़ा है, सबको पता होता है कि कील रहेगी और हथौड़ी रहेगा. मुझे कील ठोकनी है लकड़ी में तो लकड़ी के ऊपर कील पकड़ना है, हथौड़ी से मारना और कील अंदर जाएगी. ये हो गया नॉलेज.
1: नॉलेज.
0: अब इसमें ये बात आती है कि उसमें स्किल चाहिए. जो रात और दिन कर रहा है उस काम को, उसके स्किल चाहिए. अब स्किल किसे कहते हैं? स्किल का मतलब ये होता है कि आप किस एंगल में आप कील को पकड़ोगे, हथौड़ी का हैंडल कहाँ पकड़ना है, चोट कैसी करनी और कितने बार करनी, कितने जोर से मारना है, उसे हम कहते हैं स्किल. तो ये स्किल का यानी मोटा मोटी जो हो गया डेफिनेशन यही होता है. कॉर्पोरेट लाइफ में या आपको कंपनी कोई हायर करती है तो ये सारी आपकी एक स्किल दिखती है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्किल दिखती है. उसमें इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, दूसरी की सॉफ्ट स्किल्स हो गया, क्वांटिटी स्किल्स हो गया. इन सब में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है सॉफ्ट स्किल.
1: सॉफ्ट स्किल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नाउडेज इट इज प्लेइंग वेरी बिग रोल
0: यस
1: इन एवरी फील्ड.
0: जी.
1: मतलब ये नॉट ओनली इन सेल्स एंड मार्केटिंग बट अदर फील्ड्स लाइक आईटी.
0: जी.
1: देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
0: जी.
1: देन प्रोडक्शन.
0: जी.
1: इन ईच एंड एवरी फील्ड सॉफ्ट स्किल इज अ मस्ट स्किल.
0: जी जी जी जी.
1: अभी तो आप मार्केट में जाएंगे तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के काफी इंस्टीट्यूट हैं.
0: जी.
1: है ना, काफी करिकुलम में ये सॉफ्ट स्किल इंक्लूड किया गया है.
0: जी जी.
1: है ना, तो जो लिसनर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लीक ले कहीं पे. स्किल में आपकी एक सॉफ्ट स्किल ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है.
0: जी.
1: यदि नहीं है आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: जी.
1: यू कैन डेवलप इट, यू कैन एक्वायर दिस नॉलेज एंड स्किल.
0: यस यस, सही कह रहे हैं आप. और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर करियर में आपको अगर ग्रो होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये मस्ट है. मस्ट है. अब सॉफ्ट स्किल में अभी दोस्तों सोच रहे होंगे कि आप क्या होता है, इसमें दो चार चीजें मैं बता देता हूँ आपको. सॉफ्ट स्किल्स होता है जो टीम प्लेयर होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है और कोलैबोरेटिव जो स्किल्स होते हैं, साथ मिलके काम करेंगे, एक टीम में रह के आप साथ में काम कर सकते हैं. और उसमें भी अगर आप मुझे रेट करने के लिए बोलेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए. आपका नॉलेज कितना भी रहे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू.
1: करेक्ट करेक्ट. तो स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, कोलैबोरेटिव स्किल एक बहुत ज्यादा मायने रखता है. नेक्स्ट इज नॉलेज. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है उस कैंडिडेट में. किसी चीज का है ना हायर लेवल का या फिर एडवांस नॉलेज नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है. तो जैसे आपने बताया है ना, कंपनी हायर्स यू फॉर दी
0: एटीट्यूड
1: एंड ट्रेन फॉर
0: द स्किल्स.
1: तो स्किल या फिर नॉलेज हम लोग उसको दे सकते हैं, लेकिन बेसिक स्किल नहीं है तो हमें ज्यादा समय लगता है उसको ट्रेन करने में. एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम. तो हमारा कंपनी तो यही बोलता है कि वी आर नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट.
0: करेक्ट.
1: वी कैन एम्पावर योर स्किल.
0: यस.
1: बट वी कैन नॉट गिव यू द बेसिक नॉलेज एंड बेसिक स्किल. दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए, तो बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल जो है अपने में होना चाहिए, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अवेयरनेस, वी शुड हैव इट, देन एंड देन वी बिकम एम्प्लॉयबल, या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान है ही विल कंसिडर अस।
0: जी जी जी, इसमें से एक लाइव एग्जांपल मैं आपको कोट कर देता हूँ नॉलेज में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत बड़े बैंक में काम करते हैं, तो उनके पास फ्रेशर जो है एमबीए आए फाइनेंस में, जिन्होंने एमबीए किया, और रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी, और तकरीबन मेरे ख्याल से 40 लोगों का इंटरव्यू उसे लेना था, फ्रेशर थे बाजी सर। तो उसने आया, नाम बताया, एक एक करके इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने बहुत सिंपल सवाल पूछा उनको कि भाई 5 लाख रुपया आपको अगर कोई आके आपका कस्टमर देके जाएगा और 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसको इंटरेस्ट देना है तो 5 साल बाद आप उसको कितना पैसा लौटाओगे।
1: बहुत बेसिक सवाल है,
0: बेसिक सवाल।
1: हाँ।
0: अब इसमें कोई एमबीए फाइनेंस करके कोई जो कैंडिडेट आया है उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे,
1: 9th-10th standard का सवाल है,
0: सवाल है,
1: he must answer.
0: Answer करना चाहिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ बाजी सर, 40 में से 38 लोगों ने जवाब नहीं दिया सही, इसके बावजूद कि उसने समय लग रहा करके भाई चलो आपका कैलकुलेटर भी यूज करके बताओ, उसके बाद भी केवल 3 लोगों ने जवाब दिया। तो दोस्तों, नॉलेज का मतलब ये है जो आपको कॉलेज में एक्वायर करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको एक्वायर करना है, वो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैंने जिंदगी में ऐसे कभी नहीं सोचा है कि मुझे 85% मार्क्स स्कोर किया हुआ बंदा ही चाहिए, बंदी चाहिए, ऐसे कभी नहीं होता। बेसिक जो नॉलेज है वो उसमें से पता होना चाहिए जो आप पढ़ के आए हैं, सब कुछ किसी को भी नहीं पता होगा, बेसिक होनी ही चाहिए।
1: सही बात है सर।
0: मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आस्क का जो चीज है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, ये 3 फैक्टर होते हैं जो एक कैंडिडेट में एम्प्लॉयर हमेशा देखता ही देखता है। ये कल भी था, आज भी है, और ये कल भी रहेगा ही। जो सारी रिक्रूटमेंट होती है कोई भी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, ये इसी तरह से होती है दोस्तों। मैं होप करता हूँ और हमारे जो लिसनर हैं, जो सुन रहे हैं हमको, आपको काफी सारा इसमें से हेल्प आपको मिलेगी,
1: और हम लोगों ने जो डिस्कस किया है मुझे लगता है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सबको हेल्प करेगा आपका करियर बिल्ड करने में।
0: थैंक यू वेरी मच पेशेंटली लिसने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पे, वो हमारे आईडी पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, हम आपके जवाबों को उत्तर देने का कोशिश करेंगे पूरा।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू।

0: एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार। संस्कारों की ज्योति से जो जीवन को प्रकाशित करे, सेवा और सद्भाव से जो समाज को समृद्ध करे, ऐसे ही पावन संदेश का पर्व है महेश नवमी। आप सभी श्रोताओं को महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंजलि प्रतीक ब्यानी आप सभी के लिए लेकर आई हूं महेश नवमी के अवसर पर एक छोटी सी वार्ता मेरी ओर से, जो बताएगी कि समाज और समाज का देश में क्या योगदान है। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी का यह पावन दिन केवल एक तिथि या एक समुदाय का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन जीवन मूल्यों का पर्व है जो संपूर्ण मानव समाज को दिशा प्रदान करते हैं। महेश नवमी हमें उस गौरवशाली परंपरा की याद दिलाती है जब भगवान महेश अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से माहेश्वरी समाज का शुभ उद्भव हुआ। हमारे पूर्वजों ने क्षत्रिय धर्म से वैश्य धर्म की ओर अग्रसर होकर केवल अपने व्यवसाय को नहीं बदला, बल्कि अहिंसा, सेवा, सदाचार और लोक कल्याण के मार्ग को अपनाने का एक महान संकल्प लिया। भगवान महेश की कृपा से 72 खापों के रूप में एक ऐसे समाज की स्थापना हुई जिसकी पहचान सत्य, विश्वास, परिश्रम और सेवा बनी। लेकिन किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका इतिहास नहीं होता, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। समय बदला, युग बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन माहेश्वरी समाज के मूल मूल्य नहीं बदले। व्यापार में ईमानदारी, परिवार में अपनापन, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण, यही समाज की असली विरासत है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब महेश नवमी हमें याद दिलाती है कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही आवश्यक है। महेश नवमी का संदेश केवल माहेश्वरी समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जब दुनिया प्रतिस्पर्धा की बात करती है, तब यह पर्व सहयोग की भावना सिखाता है। जब भौतिक उपलब्धियों को सफलता का पैमाना माना जाता है, तब यह पर्व हमें संस्कारों और मानवीय मूल्यों की याद दिलाता है। और जब समाज विभाजनों से जूझ रहा हो, तब यह पर्व एकता, सद्भाव और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। और स्वामी विवेकानंद का यह प्रेरणादायी संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन विचारों का सार भी यही है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी जीना जाना चाहिए। आज आवश्यक है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को केवल सफल ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, संस्कारी और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा दें। हमें अपनी बेटियों को अवसर देना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च स्थान देना है, बुजुर्गों के अनुभवों का आदर करना है और सेवा को अपने जीवन का स्वभाव बनाना है। क्योंकि विरासत केवल संपत्ति से नहीं बनती, विरासत संस्कारों से बनती है। और जिस समाज की जड़ें संस्कृति में हो, उसकी शाखाएं सदैव प्रगति की ओर बढ़ती है। आज महेश नवमी के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम सत्य को अपनाएंगे, सेवा को अपना धर्म बनाएंगे, सद्भाव को अपनी शक्ति बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा समाज छोड़कर जाएंगे जो समृद्ध होने के साथ साथ संवेदनशील और संस्कारवान भी हो। क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसके वैभव से नहीं, उसके मूल्यों से होती है। समृद्धि में विनम्रता, सफलता में सेवा और जीवन में संस्कार। भगवान महेश और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महेश। धन्यवाद।
2: हाय, मी आरजे स्वरा। आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
1: कृषी संदेश।

नमस्कार श्रोताओं। कबीर साहब कहते हैं, आया न आया भया, इस संसार में मनुष्य का आना न आने के बराबर हो गया है। क्यों? जे बहुराता संसार, क्योंकि यह पूरा संसार बावला हो गया है, माया के वशीभूत होकर पागल हो गया है। जब मनुष्य यहाँ आकर अपनी चेतना को हो नहीं जगाता, तो उसका यह कीमती जन्म लेना पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है। अगली पंक्ति में इस भटकाव के कारण बताते हैं, पंत भुलावा गफिलियाँ, वह अपने असली रास्ते को भूल गया है, क्योंकि वह गफलत यानी गहरी लापरवाही और अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। और इसका परिणाम क्या होता है? गए कुबुद्धि हार, वह अपनी कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि के कारण जीवन की इस बाजी को पूरी तरह हार कर यहाँ से विदा हो जाता है। अगर इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह दोहा मानवीय चेतना के पतन की कहानी कहता है। परमात्मा ने मनुष्य को विवेक की शक्ति दी थी ताकि

0: खुद का निरीक्षण कीजिए कि कहीं हम भी उस बहुराते यानी बावले संसार का हिस्सा तो नहीं हैं। क्या हम भी गफलत की उस नींद में सो रहे हैं जहां हमें समय के बीतने का एहसास ही नहीं है। आज कोशिश कीजिए इस आत्मविस्मृति से बाहर निकलने की। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, कुबुद्धि को छोड़कर सुबुद्धि की ओर बढ़िए, जो आपको सही और गलत का अंतर सिखाती हैं। जब तक आँखों में सांसों की रोशनी है, तब तक अपने असली रास्ते को ढूंढ लीजिए, ताकि आपका संसार में आना सार्थक हो सके और आप जीवन की बाजी हारने से बच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अभय चौहान, फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ मेरे दोस्त के साथ मिस्टर राजन बाजी प्रोग्राम करियर गाइडेंस में। आपको फिर से हम लेके आए हैं नए टॉपिक्स, और पिछली बार जैसे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डिसाइड द करियर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 18 से लेके 21 तक की उम्र होती है वो हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 18 मतलब तकरीबन आप 12वीं पास हो गए रहते हैं या होने वाले होते हैं, 21 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं या होने वाले होते हैं। तो ये जो टाइम होता है, जैसे पिछले एपिसोड में हमने जो बात की, इस उम्र में ये सब डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैंने करियर में क्या करना है।
1: पूरा ये 3 साल में आप क्या करते हो
0: जी,
1: क्या सोचते हो
0: जी,
1: क्या नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो
0: जी,
1: आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सारी चीजों पे डिपेंड आपका पूरा एंटायर लाइफ बन जाता है
0: जी। जी सही कह
1: रहे हो, ये 3 साल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: आपके करियर के लिए
0: जी,
1: और यहीं से आपका करियर बनता है
0: जी,
1: ये 3 साल में ही आपका करियर बनता है। तो मैं गुजारिश करूंगा ये सारे अपने लिसनर्स को कि ये 3 से 4 साल जो है आपके
0: जी,
1: बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर और बहुत ही कॉन्शियसली ये बिताए, जो कि आपके करियर के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: सही कह रहे हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम टच करने वाले हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर टू हायर यू, मतलब कोई एक्स वाई जेड कंपनी है तो वो आपको हायर क्यों करे, किस लिए करे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, कैंडिडेटचर ने क्या होना चाहिए कि वो आपको हायर करे। अब आप कहेंगे कि इंजीनियर होना तो बी होना चाहिए, ठीक है, हम उस एस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, पर एक्चुअली एम्प्लॉयर को चाहिए क्या रहता है, तो उसमें हम लोग अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। आप श्रोताओं जो लिसनर हैं उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं। मेरे कॉर्पोरेट करियर में तकरीबन 8 से 9 हजार इंटरव्यूज में ले चुका हूं और लोगों को हायर कर चुका हूं। सेम मेरे जो सहयोगी हैं उसी तरह से
1: मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा है सर
0: जी।
1: अभी जैसे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी काम कर चुका हूँ
0: जी,
1: तो हर बार मेरी सोच फिक्स रहती थी कि मुझे कैसा कैंडिडेट चाहिए
0: जी,
1: मुझे कैसा आदमी चाहिए मेरे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए
0: जी, जी, जी।
1: तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट आपने डिस्कशन के लिए ओपन किया है
0: जी, जी।
1: कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर
0: जी जी,
1: है ना। तो ये अपने दोनों का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। तो सर आपसे चालू करते, आप बताइए कि आप क्या देखते थे कैंडिडेट में।
0: हाँ जी, मैं शेयर करता हूँ कि मैं क्या देखता था और आज भी जो भी हायर करते हैं लोग वो क्या देखते हैं। इसमें 3 फैक्टर है, हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लेंगे। अगर आपके पास जो लिसनर है कागज पेन है तो आप लिख लीजिए, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो 3 फैक्टर जो एम्प्लॉयर जो देखते हैं उसमें एक एक चीज है। सबसे पहला फैक्टर आता है कॉम्पिटेंसी,
1: 100%
0: है ना। अब कॉम्पिटेंसी एक इंग्लिश शब्द है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक एलाबरेट कर लेता हूँ कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है। कैन ही डू द जॉब, मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मुझे गड्ढा खुदवाने का काम है तो मैं उस बंदा या बंदी को हाथ में कुदाल दे दूंगा तो ये गड्ढा खोद पाएगा कि नहीं पाएगा। कैन ही डू द जॉब, कॉम्पिटेंसी,
1: वो ये काम कर पाएगा या नहीं। दूसरी चीज मैं ये देखता था कि मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है वो जॉब करने के लिए, वो काम करने के लिए उसका मोटिवेशन लेवल कितना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो काम जबरदस्ती से कर रहा है
0: जी,
1: या मजबूरी में आके ये काम यहाँ पे कर रहा है।
0: ओहो,
1: है ना। तो ये मैं इंटरव्यू जब भी लेता था है ना, तो वो कैंडिडेट में देखता था कि उसका मोटिवेशन लेवल पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या है। जैसे मैं सीधा सा सवाल पूछूं कि भाई तू सेल्स एंड मार्केटिंग में ही क्यों आना चाहता है, या फिर मैं पूछूं कि भाई तू ऑपरेशन में ही क्यों जॉब करना चाहता है ना। कुछ कैंडिडेट का एप्टीट्यूड होता है R&D का
0: जी,
1: तो मैं पूछता हूँ उनको कि भाई तू R&D में ही क्यों करना चाहता है।
0: बराबर।
1: तो मेर पैसा यदि ये सवाल है तो हाँ, उसका वो मोटिवेशन नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: है ना। उसका इनर इंटरेस्ट क्या है, उसका इनर मोटिवेशन, यदि उसका इंटरनल इंटरेस्ट है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सर, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ
0: जी,
1: आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन टू दिस प्रोफाइल
0: यस
1: बिकॉज दैट इज माई लाइकिंग, ये मैं सुनना चाहता हूँ
0: जी,
1: जो भी इंटरव्यू के लिए आता है। तो ये मोटिवेशन लेवल उसका वो पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या है, ये दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंस मैं उसको देता हूँ और वो चेक करता हूँ
0: राइट,
1: जो भी मेरे सामने इंटरव्यू के लिए बैठा है।
0: अब तीसरा पॉइंट मैं शेयर कर लेता हूँ बाजी सर। तीसरा पॉइंट होता है मैच। अब लिसनर जो सुन रहे होंगे, मैच मतलब वो शादी वाला कुंडली वाला मैच मत समझिएगा, क्या वो वाला मैच नहीं है ये। मैच मतलब अभी इसमें होता है कि मेरे पास जैसे कैंडिडेट आते थे, मेरे पास XYZ का प्रोफाइल है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक टीम है, उसमें मेरे पास समझो 2 रिक्वायरमेंट, मेरे पास वैकेंसी है और मुझे 2 लोग भरने हैं, तो सबसे पहले मैं ये ही देखता था कि जो मेरे पास ऑलरेडी टीम है उस टीम में वो ये जेल हो पाएगा कि नहीं।
1: करेक्ट।
0: फर्ज करो कि अगर सारी एक एज ग्रुप हो गया या कुछ थॉट प्रोसेस वाले लोग हो गए, तो इस कैंडिडेट को मैं अगर ले रहा हूं तो इस टीम में वो जेल हो पाएगा, मैच हो पाएगा कि नहीं, पहला ये। दूसरा, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। मैं इसके लिए एक बहुत लाइव एग्जांपल मेरा खुद का ही मैं दे देता हूं। मैं 10 से 12 साल पहले मैं एक एमएनसी बैंक में काम करता था, नाम नहीं लूंगा मैं। तो वहां पे जब रिक्रूटमेंट होती थी तो वहां पे रिक्रूटमेंट में सबसे पहले ये देखते थे कि किस लेवल पे वो बंदा कैंडिडेट है, क्योंकि वहां पे जिस किसी को भी रिक्रूट करते थे बहुत हाई फ्लाइंग टाइप के उनको कैंडिडेट चाहिए रहते थे, जो पर्सनालिटी हाई फ्लाइंग।
1: करेक्ट।
0: तो अगर वो उसमें मैच बैठता था, अगर हाई फ्लाइंग पर्सनालिटी है तो ही लेते थे, नहीं तो नहीं लेते थे चाहे वो कितना भी अच्छा हो।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: तो एज ए इंटरव्यूअर मैं हमेशा ये देखता था टीम में ये फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा तो ही इज इन।
1: आपने बताया कि ये मैट्रिमोनियल मैच नहीं है
0: जी,
1: बट
0: जी।
1: मैं बता दूं आपको सर, वहां पे भी सिमिलर एक चीज होती है
0: जी,
1: कि एम आई फिट फॉर यू एंड आर यू फिट फॉर मी।
0: राइट राइट।
1: तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वही है कि इज द कैंडिडेट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज फिट फॉर कैंडिडेट और नॉट,
0: यस
1: दैट इज द मैच।
0: यस यस। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अभी ये 3 फैक्टर्स जो एम्प्लॉयर देखता है कैंडिडेट में, हमने उस पर डिस्कशन कर दिया, उसको रिपीट कर देते हैं, कॉम्पिटेंसी, मोटिवेशन और मैच।
1: मैच।
0: अभी दूसरा पॉइंट आता है जो मैं देखता था सबसे इम्पोर्टेंट, इज ही एम्प्लॉयबल।
1: करेक्ट।
0: मतलब जो कैंडिडेट है उसको जॉब दिया जा सकता है कि नहीं, वो उसको एम्प्लॉय हम कर सकते हैं कि नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है इजी एम्प्लॉयबल, बाजी सर हम उसको 3 चीज में उसको डिवाइड कर लेंगे, जिसे मैं कहता हूँ आस्क, ASK।
1: करेक्ट।
0: है ना, उसको कहते हैं आस्क। आस्क मतलब ये हो गया एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, ये 3 ही चीज होती है जो आपका करियर बनाती है।
1: कैंडिडेट एम्प्लॉयबल है या नहीं है ना, मैं भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ इसके ऊपर। मेरे पास लास्ट मंथ में एक कैंडिडेट आया था, ही वॉज फ्रॉम केरला, ही हैड दी 5 ईयर्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस।
0: ओके।
1: हिज रिक्वायरमेंट वॉज सिमिलर, सैलरी दिया तो भी चलेगा सर, बट अदर देन मलयाली एंड इंग्लिश उसको कोई और लैंग्वेज आती ही नहीं थी, और यहाँ पे है कि हमें इंटरेक्ट करना है ना, मेजरली पुणे में तो हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है महाराष्ट्रियन, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स आर महाराष्ट्रियन, तो एटलीस्ट समझना तो चाहिए
0: जी।
1: तो इवन दो ही हैड द प्रॉपर एक्सपीरियंस, इवन दो ही हैड द प्रॉपर क्वालिफिकेशन, आई कुड नॉट सेलेक्ट हिम।
0: प्रोफाइल के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे उस प्रोबेबली, शायद।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिट नहीं था
0: जी,
1: है ना।
0: अभी सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो सबसे पॉइंट है, अभी इसमें आता है, हम 3 जो पॉइंट मैंने अभी बताया, आस्क, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। तो मैं भी एटीट्यूड पे लाइट थ्रो करूंगा और हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।
1: हाँ।
0: और जो हमारे लिसनर है उनको मैं आपको बता दूं, एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट है दोस्तों, आप गार्ड बांध के रख लो, कॉर्पोरेट हायर्स यू ओनली फॉर एटीट्यूड एंड दे विल ट्रेन यू फॉर स्किल्स। मैं रिपीट करूंगा, कंपनी विल हायर यू फॉर एटीट्यूड एंड They will train you for skills. अब मैंने भी जितने को लोगों को हायर किया, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता, मुझे अगर एटीट्यूड दिख गया बंदे में या बंदी में तो मैं उसको हायर कर लेता था। अब आप सोचेंगे बहुत कॉमनली यूज वर्ड है एटीट्यूड, अरे मस्त एटीट्यूड है, चांगला एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, अरे एटीट्यूड दाखो तो। पर अगर हम किसी को पूछने जाएंगे एटीट्यूड है क्या, तो डिफाइन करना उनको मुश्किल हो जाता है कि है क्या। तो इस एंगल से मैं आपको एटीट्यूड में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या देखते थे हम कि जब कैंडिडेट को हायर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एटीट्यूड में आ जाता है विलिंगनेस टू लर्न, है कि नहीं, काम सीखने की इच्छा है कि नहीं, कमिटमेंट, डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड, एम्बिशियस है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है और ये एटीट्यूड के अंदर ही आता है।
1: बहुत सही बता रहे हैं सर आप एटीट्यूड के बारे में, और मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग
0: जी,
1: है ना। मैं एक छोटा सा कोट जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ
0: जी,
1: है ना, एक बहुत अच्छा कोट है
0: जी,
1: ऑथर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, attitude is everything. The longer I live, the more I realize the impact of attitude on my life.
0: Right.
1: Attitude to me is more important than the past.
0: Correct.
1: Than education.
0: Ji.
1: Than money.
0: Hmm.
1: Than circumstances.
0: Ji.
1: Than failure.
0: Yes.
1: Than success.
0: Yes.
1: Than what other people think, say or do. It is more important than appearance, giftedness or skill.
0: Hmm.
1: It will make or break a company, a home.
0: So, दोस्तों, तो आपने सुन लिया कि एटीट्यूड का कितना इम्पोर्टेंट है. अब इसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा. मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू लिए और रिक्रूट किया लोगों को, अगर मुझे उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड उसका पसंद आ जाता है और बाकी चीजों में अगर थोड़ा कम भी है तो भी मैं उसको हायर कर लेता था. अगर एटीट्यूड रहेगा तो वो जो कैंडिडेट है वो सीखेगा, परफॉर्म करेगा, सीखने की इच्छा रखेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा और वो किसी भी कंपनी के लिए एसेट साबित होता है. तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं उसके वर्ग में. नेक्स्ट है तो है
1: स्किल.
0: स्किल
1: स्किल मतलब क्या कि उसका एनालिटिकल एबिलिटी, सॉफ्ट स्किल, क्वांटिटेटिव स्किल, कंप्यूटिंग स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल. दिस इज हाउ वी कैन डिस्क्राइब द स्किल.
0: जी जी जी.
1: तो स्किल एक चीज हम लोग देखते हैं, तो इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं सर?
0: बेसिक स्किल्स है, मैं बहुत उसको लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली द स्किल्स आर.
1: राइट.
0: व्हाट यू मीन बाय स्किल? अब हम एकदम ग्राउंड लेवल पे चले जाए, सब कुछ छोड़ दीजिए, अनपढ़ लोग जैसे होते हैं हम उस लेवल पे हम जाते हैं.
1: राइट.
0: अभी हर एक को पता है, जो लिसनर है, बच्चा है, बूढ़ा है, सबको पता होता है कि कील रहेगी और हथौड़ी रहेगा. मुझे कील टोकनी है लकड़ी में तो लकड़ी के ऊपर कील पकड़ना है, हथौड़ी से मारना और कील अंदर जाएगी. ये हो गया नॉलेज.
1: नॉलेज.
0: अब इसमें ये बात आती है कि उसमें स्किल चाहिए. जो रात और दिन कर रहा है उस काम को, उसके स्किल चाहिए. अब स्किल किसे कहते हैं? स्किल का मतलब ये होता है कि आप किस एंगल में आप कील को पकड़ोगे, हथौड़ी का हैंडल कहाँ पकड़ना है, चोट कैसी करनी और कितने बार करनी, कितने जोर से मारना है, उसे हम कहते हैं स्किल. तो ये स्किल का यानी मोटा मोटी जो हो गया डेफिनेशन यही होता है. कॉर्पोरेट लाइफ में या आपको कंपनी कोई हायर करती है तो ये सारी आपकी एक स्किल देखती है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्किल देखती है. उसमें इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, दूसरी की सॉफ्ट स्किल्स हो गया, क्वांटिटी स्किल्स हो गया. इन सब में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है सॉफ्ट स्किल.
1: सॉफ्ट स्किल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नाउडेज इट इज प्लेइंग वेरी बिग रोल.
0: बिग रोल, यस,
1: इन एवरी फील्ड.
0: जी.
1: मतलब ये नॉट ओनली इन सेल्स एंड मार्केटिंग बट अदर फील्ड्स लाइक आईटी,
0: जी,
1: देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
0: जी,
1: देन प्रोडक्शन,
0: जी,
1: इन ईच एंड एवरी फील्ड सॉफ्ट स्किल इज अ मस्ट स्किल.
0: जी जी जी जी.
1: अभी तो आप मार्केट में जाएंगे तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के काफी इंस्टीट्यूट हैं, है ना, काफी करिकुलम में ये सॉफ्ट स्किल इंक्लूड किया गया है.
0: जी, जी.
1: है ना. तो जो लिसनर्स है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लीक ले कहीं पे.
0: जी.
1: स्किल में आपकी एक सॉफ्ट स्किल ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है.
0: जी.
1: यदि नहीं है आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: जी.
1: यू कैन डेवलप इट, यू कैन एक्वायर दिस नॉलेज एंड स्किल.
0: यस यस, सही कह रहे हैं आप. और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर करियर में आपको अगर ग्रो होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये मस्ट है. मस्ट है. मस्ट है. अब सॉफ्ट स्किल में अभी दोस्तों सोच रहे होंगे कि आप क्या होता है, इसमें दो चार चीजें मैं बता देता हूँ आपको. सॉफ्ट स्किल्स होता है जो टीम प्लेयर होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, और कोलैबोरेटिव जो स्किल्स होते हैं, साथ मिलके काम करेंगे, एक टीम में रह के आप साथ में काम कर सकते हैं. और उसमें भी अगर आप मुझे रेट करने के लिए बोलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए. आपका नॉलेज कितना भी रहे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू.
1: करेक्ट करेक्ट. तो स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, कोलैबोरेटिव स्किल एक बहुत ज्यादा मायने रखता है. नेक्स्ट इज नॉलेज. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है उस कैंडिडेट में. किसी चीज का है ना हायर लेवल का या फिर एडवांस नॉलेज नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है. तो जैसे आपने बताया है ना, कंपनी हायर्स यू फॉर दी
0: एटीट्यूड
1: एटीट्यूड
0: एंड ट्रेन फॉर
1: द स्किल्स. तो स्किल या फिर नॉलेज हम लोग उसको दे सकते हैं, लेकिन बेसिक स्किल नहीं है तो हमें ज्यादा समय लगता है उसको ट्रेन करने में, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम, है ना। तो हमारा कंपनी तो यही बोलता है कि वी आर नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
0: करेक्ट,
1: वी कैन एम्पावर योर स्किल,
0: यस,
1: बट वी कैन नॉट गिव यू द बेसिक नॉलेज एंड बेसिक स्किल, दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए तो बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल जो है अपने में होना चाहिए, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अवेयरनेस, वी शुड हैव इट, देन एंड देन वी बिकम एम्प्लॉयबल, या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान है ही विल कंसिडर अस।
0: जी जी जी, इसमें से एक लाइव एग्जांपल मैं आपको कोट कर देता हूँ नॉलेज में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड है, बहुत बड़े बैंक में काम करते हैं, तो उनके पास फ्रेशर जो है एमबीए आए फाइनेंस में, जिन्होंने एमबीए किया, और रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी और तकरीबन मेरे ख्याल से 40 लोगों का इंटरव्यू उसे लेना था, फ्रेशर थे बाजी सर। तो उसने आया, नाम बताया, एक एक करके इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने बहुत सिंपल सवाल पूछा उनको कि भाई 5 लाख रुपए आपको अगर कोई आके आपका कस्टमर देके जाएगा और 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसको इंटरेस्ट देना है तो 5 साल बाद आप उसको कितना पैसा लौटाओगे।
1: बहुत बेसिक सवाल है,
0: बेसिक सवाल।
1: हाँ।
0: अब इसमें कोई एमबीए फाइनेंस करके कोई जो कैंडिडेट आया है उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे,
1: 9th 10th स्टैंडर्ड का सवाल है,
0: सवाल
1: ही मस्ट आंसर
0: आंसर आंसर करना चाहिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ बाजी सर, 40 में से 38 लोगों ने जवाब नहीं दिया सही, इसके बावजूद कि उसने समय लग रहा करके भाई चलो आपका कैलकुलेटर भी यूज करके बताओ, उसके बाद भी केवल 3 लोगों ने जवाब दिया।
1: ओहो,
0: तो दोस्तों नॉलेज का मतलब ये है जो आपको कॉलेज में एक्वायर करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको एक्वायर करना है, वो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैंने जिंदगी में ऐसे कभी नहीं सोचा है कि मुझे 85% मार्क्स स्कोर किया हुआ बंदा ही चाहिए, बंदी चाहिए, ऐसे कभी नहीं होता। बेसिक जो नॉलेज है वो उसमें से पता होना चाहिए जो आप पढ़ के आए हैं, सब कुछ किसी को भी नहीं पता होगा, बेसिक होनी ही चाहिए।
1: सही बात है सर,
0: मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आस्क का जो चीज है एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, ये 3 फैक्टर होते हैं जो एक कैंडिडेट में एम्प्लॉयर हमेशा देखता ही देखता है, ये कल भी था, आज भी है और ये कल भी रहेगा ही। जो सारी रिक्रूटमेंट होती है कोई भी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, ये इसी तरह से होती है दोस्तों। मैं होप करता हूँ और हमारे जो लिसनर हैं, जो जो सुन रहे हैं हमको, आपको काफी सारा इसमें से हेल्प आपको मिलेगी,
1: और हम लोगों ने जो डिस्कस किया है मुझे लगता है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सबको हेल्प करेगा आपका करियर बिल्ड करने में।
0: थैंक यू वेरी मच पेशेंटली लिसनिंग के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पे, वो हमारे आईडी पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, हम आपके जवाबों को उत्तर देने का कोशिश करेंगे पूरा।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू।

0: हाथ रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: अजदरंग छियो
2: नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हास्य तरंग सुनिए।
3: अच्छा तुम्हाला एकच सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
4: मैं काय म्हणतो, हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।

0: श्रोते हो हसी का हंगामा कहकहों का खजाना जला पण म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में सब्जी वाले का उड़ गया होश नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत.
2: Hey, hey, hey.

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: नमस्कार. संस्कारों की ज्योति से जो जीवन को प्रकाशित करे, सेवा और सद्भाव से जो समाज को समृद्ध करे, ऐसे ही पावन संदेश का पर्व है महेश नवमी. आप सभी श्रोताओं को महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं अंजलि प्रतीक ब्यानी आप सभी के लिए लेकर आई हूं महेश नवमी के अवसर पर एक छोटी सी वार्ता मेरी ओर से, जो बताएगी कि समाज और समाज का देश में क्या योगदान है. ज्येष्ठ शुक्ल नवमी का यह पावन दिन केवल एक तिथि या एक समुदाय का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन जीवन मूल्यों का पर्व है जो संपूर्ण मानव समाज को दिशा प्रदान करते हैं.